Melbourne. हाँ जी, एक बारी फिर मेरे वालों श्रोतियां नूं बहुत ही प्यार भरी तिनगी सत श्री अकाल। तुसी सुन रहे हो सांझी आवाज रेडियो दा प्रोग्राम सत श्री अकाल मेलबर्न 88.9 विन एफएम तो, ते मैं हाँ तुहाडी अपनी दोस्त ते होस्ट शमा पंगू। अज 10 सितंबर दिन वीरवार, इकट्ठे बिताउण जा रहे हैं सवेर दे ये दो घंटे, कुछ खबरां दे नाल, कुछ सोचां दे नाल, कुछ जिंदगी दियां गल्लां ते कुछ मुस्कराहटां दे नाल। पर दिन दी शुरुआत करन तो पहला मन नूं थोड़ा जिहा शांत जरूर करिए, क्योंकि ये बहुत ही जरूरी हुंदा कि असी दिन दी शुरुआत जिहड़ी आ ओह शांति नाल शुरू करिए। ते बाहरली दुनिया विच जाण तो पहला जे अंदरली दुनिया थोड़ी जी साडी स्टेबल होवे ते दिन दा रंग होर ही हो जांदा है। गुरबाणी दा बहुत ही खूबसूरत संदेश आ कि मन जीते जग जीत। कई बार असी सारी दुनिया नूं बदलन की कोशिश करते हाँ, हालात बदल जाण, लोग बदल जाण, काम बदल जावे, किस्मत बदल जावे, पर असल जित की शुरुआत अपने मन तो हुंदी आ। इसे भावना दे नाल आओ अज की शुरुआत आपां शब्द दे नाल करिए, हमेशा की तरह जिस तरह आपां प्रोग्राम दे विच करते हुंने आ, ते फिर तुहाडियां ते मेरियां गल्लां बातां पूरे दो घंटे।

रुमकण भी तैनू उड़ीके, ए कलिया ने जोबन भी सांभे पए ने, दिल है कि बस तेरे ख्याला च रहिंदा, ए दुनिया दे तंदे ता लंबे पए ने।

पता नहीं क्यों ये था एरा सब देखे देखे लग रहे ने, जिद्दां कोई अजीब जा रिश्ता है ना मेरे नाल। पर क्यों क्यों मैंने याद नहीं आ रहा कि मेरे नाल की होया सी इस थां ते।

हाँ जी, एक बार फिर गीत तो बाद तुहाडे नाल जांदे जांदे आ, सांझ 9:51 हो चुके ने। प्रोग्राम दे आखरी कुछ मिनटां दे विच असी अज जो जो गल्लां कीतियां उहदी तुहाडे नाल सांझ पा लैने आ कि इकोनमी दी गल कीती, पावर सिचुएशनस दी गल कीती, ते सब तो लंबी गल अपने अंदरली एनर्जी दी कीती। अज जांदे जांदे जदों मैं तुहानूं तुहाडे कोलों इजाजत लैनी आ, ते मैं तुहानूं इह जरूर कहांगी कि स्ट्रोंग ना बनो, स्ट्रोंग बनो या ना बनो, बनो पर बिल्कुल बनो, फैमिली लई खड़े रहो, फ्रेंड्स लई खड़े रहो, अपने बच्चों लई, अपने पेरेंट्स लई, अपनी कम्यूनिटी लई, पर एक परसन उस विच इस लिस्ट विच ऐड करो, अपने आप नूं अपने वास्ते स्ट्रोंग बनो। जिन्हां लई स्ट्रोंग नहीं बनना, वह जदों तुहानूं लग रहा हुंदा कि यह समां अच्छा मैं ते कोई गल नहीं, मैं बीमार हाँ तो मैं स्ट्रोंग बनना, उत्थे स्ट्रोंग ना बनो, पर अपने आप वास्ते स्ट्रोंग जरूर बनो, क्योंकि जिहड़ा दीवा सारियां लई रोशनी करता है उसनों भी तेल चाहिदा है। ते अपना ख्याल रखना, सैल्फिशनैस नहीं हुंदा, अपना ख्याल रखना यह यकीनी बनाना है कि तुसी अपनी जिंदगी विच लंबे समय तक प्यार, एनर्जी ते प्रेजेंस नाल मौजूद रह सको। अज दी लाइन नूं एक बार फिर अपने नाल जरूर लैके जायो कि हर थकावट नींद नाल नहीं जांदी, कुछ थकावटां अपनियां हद्दां बनाउण नाल जांदियां ने। मैं अज तुहाडे कोल बहुत जे गल्लां हुण आखरी टाइम दे विच, क्योंकि समा ज़्यादा नहीं रह गया, ते बहुत सारियां हुण गल्लां आपां नहीं कर सकते, पर जे अज तुहाडे कोल बहुत सारे काम ने, एक एक करके करो, जे दिल भार आए ते अपने आप नूं थोड़ा जिहा सॉफ्टनेस नाल रखो। जे कोई डिसीजन पेंडिंग आ, हर आंसर अज ही लभना जरूरी नहीं, ते जे जिंदगी इस वेले बहुत बिजी आ, बिजी होण दे विचकार जीना ना भुलो, क्योंकि लाइफ ओ नहीं जो एक दिन सारे काम मुकण तो बाद शुरू होवेगी, लाइफ यही आ। ए थर्सडे मॉर्निंग, ए कप ऑफ टी, ए ड्राइव टू वर्क, ते ए बच्चे दी आवाज़, ए पेरेंट्स दा फोन, ए 5 मिनट दी सनशाइन, यही लाइफ आ। इसनों पोस्टपोन ते कर बिल्कुल भी ना करो। ते मैं तुहाडी अपनी दोस्त शमा अज दे प्रोग्राम विच मेरा साथ देण लई तुहाडा बहुत बहुत दिलों धन्नवाद। जिथे भी हो खुश रहो, तंदुरुस्त रहो, अपने मन नूं हल्का रखो, ते किसे होर दी जिंदगी विच भी थोड़ी जिही रोशनी बनन दी कोशिश जरूर करो। ड्राइव कर रहे हो ते सेफ ड्राइव करना, काम ते जा रहे हो ते तुहाडा दिन बहुत ही प्रोडक्टिव ते पीसफुल रहे, घर विच हो ते घर विच सुख शांति रहे, ते दूर बैठे अपने मापिया भैन भरावां अते प्यारियां लई वाहिगुरु सब नूं चढ़दी कला विच रखण, इसे दुआ दे नाल अज लई मैं तुहाडी अपनी शमा तुहाडे तो इजाजत चाहुंदी हाँ। ते तुसीं सुन रहे सी सत श्री अकाल प्रोग्राम सांझी आवाज़ रेडियो दा 88.9 विन FM तो। प्रोग्राम किस तरह का लगा इस दी फीडबैक दी उड़ीक विच तुहाडी अपनी शमा प्रोग्राम दे आखरी गीतां दे नाल।

हाँ जी, तो फाइनली हुण तो वो इजाजत मेरे वालों तुहानू प्यार भरी सत श्री अकाल, रब राखा, मिलदे हां सोमवार नूं, वधिया वधिया वीकेंड तुहाडा लंघे, खुशहालियां भरिया होवे, ते मिलदे हां सवेरे 10 बजे तो लैके 11 बजे तक सोमवार नूं, रब राखा।